0: पीटर,
1: सिल्वर, इश्के यता उपरिशू,
0: येसेनिया, इमानिर तंगाजा पुपुंकी,
1: गुयरमे गुयरमे, कनंतामी कुंतरिश्के की, मासिका